आसुमरो हरदम हर के लाने मांगो उनसे जो है जाने बिना करे एक बहाने। सुमरो हरदम हर के लाने मांगो उनसे जो है।

सो फसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसल फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पाए।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके अपने रेडियो साथी मनीष दो हाथ जुड़कर राम राम नमस्कार पहुंच जावे और आप सुन रहे कार्यक्रम खेत खलियान को। किसान साथियों, खेत खलियान कार्यक्रम में हम बतकाव करते हैं, खेती किसानी से जुड़ी बतकाव करते हैं और किसान साथियों को हम ऐसी बातन पर बातचीत करते हैं जो कार्यक्रम में कि खेती से जुड़ी बतकाव जान होत है वो संग संग हमारे जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं वे हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं खेती किसानी से जुड़ी। यही सिलसिलो चल रहा है वो और हम चाह रहे हैं कि किसान साथी अब जागरूक हो गए और अपनी जो खेती की पद्धति है उनमें बदलाव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के हमारे जो कार्यक्रम में हम कैसे अब हमें किसान साथी समझ रहे हैं कि अब भंडारण को समय आवेक हो।

है वो। और भंडारण के संगे संगे हमारे किसान साथी ने जो मटर की फसल, चना, मसूर, बाकी कतराई भी चल रही हैगी, और गेहूं में अब पानी भी पूरे लग चुके हैंगी और तैयार बिल्कुल हो गई हैगी। अब किसान साथी हो बस एक ही डर लग रहा था कि कितम ना कितम अगर बारिश हो गई है तो फसल को उनको नुकसान हो जाएगा, कैसे उनकी फसल अब बिल्कुल पक्के हैं तैयार हो गई हैगी। तो किसान साथी को जय विषय पर बतकाओ कार्मी किलाने आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जो है वो उतरे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैंगे। उनसे आज हम बतकाव करेंगे, तीन चीजन पे हम बतकाव करें। एक तो हम के जो फसल उनमें वही है उनके भंडारण की क्या व्यवस्था करें, एमएसपी जो बिल पास हुआ है कानून जो तीन बने हैंगे उन पर भी हम चर्चा करें कि कानून उनके हिसाब से जो कानून जो कृषि कानून बने हैंगे वो तीन उनके हिसाब से का कथेंगे वे। संगे संगे हम किसान साथियों के लाने जो भी बतकाव करें उनसे पूछेंगे कि अब हमारे किसान साथी की जो जिनने मसूर चना जो बह हते तो उनके जो फसल कट गई हैगी अब उत बेका कर बहेंगे जिनसे उनकी आमदनी को बढ़ोतरी हुई है। तो जय विषय को लेकर आज हम चलो आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय चला थे, लेकिन जैसे पहले हम अपन अच्छो सो लोकगीत को सुन लेते हैं और लोकगीत सुनने के बाद हम आपको डॉक्टर संतोष पांडे जी की जा वार्ता को सुनाएंगे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और जैसा कि साथियों आप जान रहे हैं कि खेती किसानी का काम चल रहा है और कहीं कहीं किसानों ने हमारे मटर की जो फसल लगी हुई थी उनको थ्रेसिंग भी होने स्टार्ट हो गई है और कहीं कहीं किसान अपने गेहूं की जो फसल है उसमें पानी भी दे रहा है। तो इसी सिलसिले में आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हम आज उपस्थित हैं और डॉक्टर संतोष पांडे जी जो विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि किसान साथी इस समय चूंकि क्या कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद। इस समय किसान भाई की कुछ फसलें तो कट गई है, जैसे चना मटर ये सब जो है फसलें कट गई है, इनको धूप में अच्छे से सुखाकर इनका भंडारण करें। भंडारण के समय इसमें नमी का विशेष ध्यान रखें। इसमें ज्यादा नमी होने पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और बहुत ही इसमें जो है कीड़े लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए इसके बचाव के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होंगे। जहां भंडारण की व्यवस्था करनी है वहां पर ये देखना है कि कीड़े ना हो, रोग वहां पर ना हो, रोगाणुओं से उनको फ्री रखना है और उसमें नमी की सबसे महत्वपूर्ण जो है नमी ध्यान रखना है कि 8-10% से ज्यादा नमी ना हो। अगर ज्यादा नमी होगी तो जो रखरखाव जो भंडारण किया जाएगा उसमें अनाज के खराब होने की संभावना ज्यादा होगी कि अब पानी ना बरसे और अच्छा है पानी।
0: सर आपको क्या लगता है कि हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जब भी फसल का समय आता है, फसल काटने का समय आता है, तभी बारिश होती है, आपको क्या लगता है ये प्रकृति जो खेल खेल रही है उसका मेन कारण क्या है?
1: कोई खेल नहीं खेल रही है, इसके लिए हम आप खुद जिम्मेदार हैं। जो प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की है, कहते नहीं जैसे बोएंगे वही काटेंगे, हमने चीजों का जो प्राकृतिक संसाधन है नेचर का जो दोहन कर लिया है, नेचर की व्यवस्था हम

0: बिगाड़ दिए हैं उससे हमें उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। आने वाले समय में हम मौसम से, आज जो खेती की बात हो रही है, एडवांस खेती करनी होगी और हमें प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ यानी पारंपरिक खेती को छोड़कर अब अस्थाई खेती की तरफ आना होगा और सैटेलाइट से हम फार्मिंग करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। और ये तो प्रकृति है, ये आती जाती रहती है और इसके लिए हम ही आप जो छेड़छाड़ किए इसके लिए यही जिम्मेदार है।
1: सर आपको क्या लगता है कि अभी हम देख रहे हैं कि फसल आने वाली है और जैसे चना मसूर मटर है इसकी फसल लोगों ने उगा भी ली है और कहीं कहीं तो फसल अपने खेतों में भी रखी है, उनके भंडारण के लिए हमारे किसान साथी किस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए?
0: जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि भंडारण के लिए सबसे पहले चना और मटर की जो कटाई करें उस समय ये देखें कि दाना कंप्लीट रूप से तैयार हो गया है कि नहीं हो गया है। जब दाना कटाई हो जाए, फसल पीली पड़ जाए तभी उसकी कटाई की जाए और उसको धूप में ही फसल को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए जिससे उसकी नमी कम हो जाए। उसके बाद उसकी जो है मड़ाई कर ली जाए। मड़ाई करने के उपरांत उसको ये देखा जाए कि उसको मॉइस्चर मीटर से हम मॉइस्चर नाप लें कि उसमें 8 से 10% से ज्यादा मॉइस्चर ना हो। इसके अलावा जहां हम भंडारण कर रहे हैं भंडारण वाले स्थान पर किसी तरह का जो है वहां पर जो है वो ना हो, उसको फंगीसाइड डालकर जो बाजार से ले आके उसमें डालना चाहिए जिससे फंगस का अटैक ना हो खेतों में वो भंडारण वाले स्थान पर। और भंडारण वाले स्थान को हमेशा जो है ऊंचाई पर बनाना चाहिए जिससे उसमें नमी ना आ पावे, क्योंकि नमी जो फसल है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
1: आपने बात बताई है सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो फसल चूंकि जिन्होंने बहुत पहले अपनी मटर की चना की और सरसों की खेती बो दी थी उनके खेत अब खाली हो चुके हैं, वो किसान अब क्या कर सकते हैं?
0: गर्मी की बहुत सारी फसलें हैं जहां की आप उनको बो सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पानी का संसाधन है तो आप उसमें आप जो है सब्जियां बो सकते हैं। वर्तमान में गर्मी की सब्जियां हैं आपकी, तरोई है, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, इसका आप इस समय बुआई कर सकते हैं और आर्थिक रूप से संपन्नता पा सकते हैं। इसके अलावा जहां अन्ना प्रथा की समस्या है वहां पर आप अन्ना प्रथा से बचाने के लिए आप जो है एक तो जो है जानवरों को बांधें। अन्ना प्रथा कोई ऐसी प्रथा नहीं है जो कहीं अलग से, सरकार योगी सरकार ने तो जगह जगह बाड़े बना दिए हैं जिससे कि अन्ना जानवरों को इकट्ठा किया जा सकता है। और गांव वाले सब जब जब अंदर से एक प्रेरणा से एक मन से एक मंच पर ये सोच लेंगे कि हमें जानवर खत्म करना है और जानवर को अपने खेतों में नहीं आने देना है तो अन्ना प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तक हमारे किसान भाई ये नहीं चाहेंगे तब तक इसको सरकार कभी खत्म नहीं कर पाएगी।
1: एक चीज और है सर कि समय चूंकि अब बदलता जा रहा है और खेती हमारे किसान साथी अभी भी जब हम फील्ड में जाते हैं तो खेती करना मुश्किल हो गया है क्योंकि लागत इतनी ज्यादा लगती है और अगर पैदावार की बात करें वो बहुत ही कम होती है उनको लगता है। अब किसानों को किस ओर जाना चाहिए जिससे उनकी पैदावार बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो?
0: किसानों को वैज्ञानिक खेती की तरफ ज्यादा अग्रसर होना होगा। सर्वप्रथम तो किसान भाई को इस तरफ जाना होगा कि आने वाले समय में अब वो समय नहीं रहा कि हम 1 क्विंटल खाद डाल रहे हैं, हमारे पटीदार से हम कमजोर ना रहे, हमको 1.5 क्विंटल डालना है। ये सोच हमें बदलनी होगी। हमें मिट्टी की जांच करानी होगी। मिट्टी की जब जांच कराएंगे तो छोटे छोटी जो मिट्टी में कमी है पोषक तत्वों की उन जांच से हमें पता लग जाएगा और हम उसका निदान कर पाएंगे। सर्वप्रथम हमें मिट्टी की जांच कराकर जितने हमें जमीन में हमारे जिस जीवांश पदार्थ की कमी है, जिस उर्वरक तत्व की कमी है, जिस पोषक तत्व की कमी है उस पोषक तत्व को डालना होगा। इसके अलावा हमें आज के समय में सीड रिप्लेसमेंट हमेशा करना होगा। हर साल हमें बीज बदलाव करना होगा, हर साल नहीं कर पाते तो 3 साल में तो बीज का बदलाव निश्चित कर देना होगा, तभी हमारी खेती की दशा सुधरेगी। और जब तक खेती की दशा नहीं सुधरेगी तब तक किसानों की आर्थिक स्थिति संपन्नता नहीं आ पाएगी। उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है बशर्ते उसको समझाने की और समझने की जरूरत। पहले क्या होता था, दलाल ज्यादा पैसे खाते थे, अब दलाल ना खा के सीधे किसानों को ज्यादा लाभ मिलने की जो नई योजना है इसमें फायदे ज्यादा हैं। और बस इसको समझाना।

0: और इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि तो कोई नई चीज है, कोई एक बैक नहीं मानना चाहता। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे यहाँ यूरिया डीएपी आई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूरिया को जब किसानों के यहाँ लेके हमारे किसान सहायक जाते थे तो लोग कहते थे हमारा खेत बंजर हो जाएगा, हम यूरिया नहीं डालेंगे। लेकिन क्या करते थे, रात में वो आधा खेत में डालते थे, आधा रोक देते थे। धीरे धीरे लोग आज समय ये है कि आज अंधाधुंध यूरिया और डीएपी के बिना लोगों को लगता है खेती हम कर ही नहीं सकते। तो वही स्थिति इसकी भी है, ये नया कानून है, नई चीजें हैं, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% सही ही है, लेकिन उन खामियों को दूर करने के लिए जो प्रतिनिधि हैं, जो जो किसान बुद्धिजीवी किसान हैं, वो सभी बैठकर आपस में वार्ता करें और उससे निर्णय निकालें। ये तो वो ना है किसान के खेत में जो है रोड पर बैठने से कोई हल नहीं निकलता है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान साथियों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, साथ में एमएसपी पर भी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर आपका।
0: धन्यवाद भाई साहब।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और डॉक्टर संतोष पांडे जी ने कितनी मौनी बातचीत को बताया है वो कि किसान साथी जो उनके खेत खाली हो गए होंगे उनमें अब लौकी कद्दू है ये सब्जी इनकी फसल को लगा सकते हैं जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। संगे संगे उनने बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हमारी खेती किसानी जुड़ी बताई है जैसा लाने हम पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों इसी के संगे अब हम समय हुए थे जा कार्यक्रम खेत खलियान से जा देखो तो जो बताओ आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकता है हमारे जा पति पे पते हम रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा के गला के पास ओरछा और फोन नंबर 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत खलियान से जावी की इजाजत। आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलत चलत आपको सुनवाद है जो सतीश खरी और उनकी साथियों की आवाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 900 लोकगीत। नमस्कार।

चिंता से वो आत्मा कह रही है, वक्त आने से पहले ही ढल जाती है। अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप फिर ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में दोस्तों हमने किया गया आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज अपन मिले भैया ज्ञान सिंह यादव जी से और उनसे जाने विधा फाक के बारे में। तो ज्ञान सिंह भैया, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अच्छा ज्ञान सिंह भैया जी, आपसे हम जो जान पूछा है कि आपको संगीत में लगन कब से लगी?
1: संगीत में लगन तो बहुत समय से लगी।
0: अच्छा, आप क्या साल के थे जब आपको याद हो?
1: समय का तो ये स्थिति है कि हमारी अधिकांश ये स्थिति बनी कि हमारी बुजुर्गों के बीच में बैठक रही है।
0: अच्छा,
1: तो उसी में जैसे कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कहीं फाग सम्मेलन, कहीं भजन सम्मेलन, कहीं गोट सम्मेलन, कहीं कवि गोष्ठी हुई, तो उसमें सुनत में हमें भी ऐसी लगी कि इस कार्यक्रम से थोड़ा जुड़ा रहे, इसलिए था जो है थोड़ा मतलब उसमें रुचि
0: रखी आपने। अच्छा, आपने रुचि रखी तो आपको जो पता है कि आप जब कै साल के थे जब आप?
1: वैसे तो हमारी सबसे ज्यादा पिताजी मतलब देश के मुखिया रहे, जमींदार रहे।
0: अच्छा,
1: तो सबसे पहले बात हमेशा होती पिताजी से, बाद में होती।
0: अच्छा,
1: खेत और खलिहान पे चले गए।
0: हाँ।
1: और जो भी आने पूछी क्यों जो पिताजी है।
0: हाँ।
1: कहाँ गए पिताजी, कहाँ गए मुखिया जी, तो सबसे पहले हमारी बात होती। तो हर आदमी से हमारी मतलब जाओ
0: बड़ा सुनावा
1: है,
0: तो आपको लगन लगी। अच्छा, आपने सबसे पहला कौन सी चीज गाई आपको जो है ध्यान?
1: और ऐसी तो ये स्थिति है कि जैसे मतलब हमारे पिताजी पहले रामायण पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो पूरे गांव के लोग, गांव में मतलब ये स्थिति मुखिया भी थे।
0: हाँ।
1: और रामायण रखे थे।
0: अच्छा।
1: तो सबसे पहले पिताजी जो है रामायण में रुचि रखे थे। हाँ। तो हमने सुनने भी आई।
0: हाँ।
1: फिर धीरे धीरे पढ़ाई चालू हुई।
0: हाँ।
1: तो हम फिर रामायण से शुरू हुए।
0: अच्छा, रामायण से आपने शुरू करी, तो आपको कौन चौपाई ऐसी याद है? आज के साल हो गई आपको, कितनी उम्र है आपकी?
1: आप तो 62 साल की उम्र
0: हुए। तो अब जब आपने रामायण पढ़ी हो गए, तो अब आज अपन कौन चौपाई बता पाएंगे?
1: बिल्कुल बता दू।
0: कौन सी चौपाई आपको अभी तक याद रही?
1: आज जैसे भगवान बल्लभ जी रहे
0: जी
1: और भगवान राम और कृष्ण रहे।
0: हाँ।
1: लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें लिख दी कि जिसके कारण मतलब बोलने से भी मतलब कुछ काम हो जाते हैं। तो जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत अस होई। इस चौपाई में बोलने से आदमी धोखा नहीं सोएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: क्या बात।

0: जी अच्छा भाई आपको अभी तक याद है?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा जा तो भाई आपके घर की बात करें, आपके पिताजी रामायण पढ़ते सो आपको ऐसे लगन लगी सो आपने रामायण में जा चौपाई अभी तक याद रखी।
1: चौपन तो
0: और भी रहे आप नो, लेकिन अब ई के अलावा रामायण के अलावा आपने कोनो जैसे के कीर्तन हो, कोनो भजन हो, कोनो भाग हो तो आपको और का याद है?
1: तो जैसे पुरानी भाग है,
0: अच्छा
1: राजा मनु रानी शत्रु पहाड़ी,
0: अच्छा
1: तो उनके नाम से किसी कवि ने एक भाग तैयार कर दी।
0: अच्छा
1: तो वो भाग जब हमने सुनी तो हमें भी लगी कि बहुत पुरानी भाग है।
0: हाँ।
1: तो एक भाग भी हमने मतलब
0: अच्छा सुनी
1: सुनी।
0: हाँ। तो कौन प्रकार से अच्छे गा के सुना?

तो भय मन में तपती कान तजार बस गई बीत जाय से पतियाई बारम्बार कभी बार मांगो किले गए की तन में हार हर दर्शन संसार नफ्स मृत्यु की बाजी ने तन त्यागी कृपा सिद्ध श्री की अमृत रूपी बानी दर्शन देवे भक्ति कांस प्रति अंतर ध्यानी।

0: आप समान पुत्र मुए दयो मन में विनय बखानी। भगवान विष्णु कई बार आए तपस्या में, जब जो है राजा मनु रानी शत्रु पर बैठ गए, अपने पुत्र का राजपाट सौंप गए और वन में तपस्या की लाइन चले गए। पहले ऐसी परंपरा आती कि कुछ दिन बालापन में, कुछ दिन जवानी पन में, कुछ राजभोग के, इसके बाद वन में तपस्या कर लोग वन निकल जाते। तो उन्होंने अपने राजा मतलब ने अपनी पद की उपाधि सौंप के अपने चले गए। तो राजा रानी ये सलाह कर पाई कि अगर भगवान विष्णु हमें मिल गए तो कौन सा वरदान मांगे, जाता यदि हो पाई।
1: अच्छा,
0: इस बार में जब तपस्या में लौलीन हो गए तो भगवान विष्णु की सिंहासन देखने लगी कई बार क्षीर सागर में। तो नारद जी कहा भगवान विष्णु ने पहुंचाओ कि देखो कौन सो तपसी तपस्या पे बैठे हो हमारे सिंहासन बार बार देखती है। तो नारद जी ने चल के देखा तो राजा और रानी तपस्या में लौलीन है, थोड़े गैप बना के एक दूसरे की चर्चा न सुन सके और अपने तपस्या में लौली रहती। इस बीच में जब नारद जी आए तो राजा मनु और रानी शत्रुओं ने सोची जय विष्णु भगवान है, क्यों देखा नहीं था। उन्होंने पूछी आप कौन है, बोले हम तो नारद हैं। बोले हम तो समझा के विष्णु हैं, तुम कहां से यहां टपकी। तो इस बीच में बोले आप कौन है, कैसे किसने को तुम बैठे। बोले हम भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा नहीं बैठे हैं और हम विष्णु से क्या मांगना है। बोले नहीं हमको दर्शन पर्याप्त है, दर्शन मिल जाए। तो उन्होंने की भाई विष्णु भगवान आएंगे दर्शन मिलेंगे आपको और ये अपने तपस्या में लौलीन हो गए। तो नारद जी ने विष्णु भगवान का बताई कि दो भक्त बैठे राजा मनु रानी शत्रुपा, तो भी आपके दर्शन चाहते। बोले दर्शन देने में क्या तकलीफ है। तो कई बार विष्णु भगवान उन्होंने सोची नारद जी जैसे और कोई आ गए, तो विष्णु भगवान कई बार आए कि राजन नित खोलो वरदान मांग लो, क्या मांगने हम विष्णु हैं। देखो मैं नित नहीं खोले। जब बार बार सिंहासन निकल लगी तो विष्णु भगवान परेशान हुए, लक्ष्मी भी परेशान हुए, सिंहासन बार बार डिग गई थी क्षीर सागर में। तो फिर एक बार भगवान विष्णु आए, बोले कि ले भाई राजन आज जो भी वरदान मांग लो मोर मांगे वरदान ले लो और फिर ये मौका नहीं मिलेगा। इस बीच में राजा मनु ने अपने नित खोले और तेरा मंगना की। तो उन्होंने सोची कौन सा हम वरदान मांगे, जी भी हमने विचार भी नहीं बना पाओ। तो लेकर ऐसा हमें पुत्र मिल जाए तो सबसे अति उत्तम है। तो मन में विचार किया, मुखारबंद से नहीं की राजा मनु ने कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। मन में विचार किया कि हमें विष्णु भगवान जैसा ऐसा पुत्र मिल जाए। तो विष्णु भगवान तो तीन लोग किनाते थे, उन्होंने सोची ऐसा पुत्र तो कहीं दूसरा हो ही नहीं सकती हमारे सिवाय, तो उसमें समय लगेगा। तो उन्होंने की ठीक है वस्तु ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बताई भगवान विष्णु भगवान ने कि अभी तो जो है सतयुग चल रहा है, जब त्रेता आएगा त्रेता में आपको हम ये सब पुत्र मिलेगा। तो मतलब समझ जाना कहीं। इसके बाद माता शत्रुपा के पास पहुंची विष्णु भगवान, उन्होंने देवी कहा है शत्रुपा से कि देवी वरदान मांग लो, क्या मांगना है। तो उन्होंने सोची कौन सा वरदान मांगे, तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो पति ने वरदान मांगी वे हमें प्राणों से अति प्यारे हैं। जबकि राजा रानी को भी पता नहीं था कौन वरदान ने मांगे क्या है, लेकिन उनकी अति उत्तम है और जो पति ने वरदान मांगे वे हमें प्राणों से प्यारे हैं। तो

0: विष्णु भगवान बोले ठीक है अभी आप सतयुग चला है, वैकुंठ पान करो, अमरावती स्थान दो आपको, अमरावती में वैकुंठ पान करो, जब त्रेता आएगा तो हम पुत्र के निमित्त में हम ही आएंगे आपके यहाँ, और दूसरा कोई है नहीं, तो हम पुत्र के निमित्त में आपके यहाँ आएंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है आप वैकुंठ पान करो, तो विष्णु भगवान अपने चले जाते हैं और ये नए अमरावती में अपना असन जमा किया, मतलब वैकुंठ पान की गया। जब ये त्रेता युग आया तो त्रेता में राम बारह कला से है, भरत जी चार कला से है, मतलब इस तरीका से, और मतलब सीता जी आई, तो ये मतलब विष्णु भगवान का अवतार है राम।
1: अच्छा,
0: सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग तो चार ही है, इन्हें चार में फेरबदल होता रहो समय समय पे, तो भगवान त्रेता में पुत्र के निमित्त में आए शत्रुपा, जो राजा मनु होते शत्रुपा थी दयान के दशरथ वो कौशल्या होंगे। इसके बाद जो कौशल्या है और वो जो है कौशल्या और दशरथ थे, फिर आने की चीज जो है भाई यहाँ पे देवकी और वासुदेव, उन्हीं का अवतार है। और आज यह स्थिति है कि वो तो महान शक्ति है, थी महान शक्ति है और रहेंगी, जो पूर्व में है माता पार्वती है और शंकर भगवान है, उन्हीं का रूप कारसदेव का है, कारसदेव के रूप में शंकर जी है, और जो हेला की बहन है वो माता पार्वती है। तो फागली तो बहुत पुरानी है, और लेकिन अब जाए कि एक तो कम समय है और समय के संगे जो है मतलब बहुत लंबी कथा है, इसलिए जो है इसका शॉर्ट में।
1: हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने देखो कितना अच्छा वृत्तांत जो सुना दो। अब एक क्रम में आपसे हम जो भी जाने बचा है कि आपने इसके अलावा और कौन रुचि लाइव गाना बजाते
0: हैं? रुचि के लाने तो वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम जुड़े रहे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे कहीं कीर्तन है, कहीं भजन है, और कहीं मतलब गुट गायन है, कभी फाग सम्मेलन है, कभी किसान सम्मेलन है, तो कहीं ना कहीं तो जुड़े रहे। अच्छा, इसी क्रम में जैसे मतलब कभी शंकर जी बनवा उतरे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो जैसे अभी एक माह शंकर जी बने अपने यहाँ घर पे, तो फिर अभी 14, 15, 16 तारीख में मतलब अपने 3 दिन कार्यक्रम चला।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मतलब अखंड रामायण चली, और फिर इसके बाद नमः शिवाय को कीर्तन भी चलो, और फिर गुट गायन भी चलो। तो अभी ये 14, 15, 16 तारीख में कार्यक्रम करे गए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ा रहे, पुरानी परंपराएं लुप्त ना हो जाएं, इसका जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये करने से पाप क्षय होता है, और आगे अगले पद के लिए जैसे अपन आज अपन जो भोजन करते हैं और आगे जो भोजन करेंगे उसकी व्यवस्था करते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य होनी है। इस मनुष्य होनी में अभी अपन कुछ कर सकते हैं, अगर पशु बना दो तो एक जगह बने बंदे क्या कर सकते हैं, तो मनुष्य होनी में है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस मनुष्य होनी के लिए देवता तरसते हैं, मतलब
1: सही बात करें,
0: अगर देवता भी सामने आ जाए तो आदमी भय खा जाए, वो तो प्रेत आ जाए तो भय खा जाए, और मनुष्य बात कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अभी मौका है, कर लेना चाहिए। योग तो चार ही है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, तो इस कलयुग में भी एक राम नाम ऐसा है कि जिसका रटने से उद्धार हो जाता है,
1: बस केवल नाम लेने से।
0: नाम लेने से पहले यज्ञ करते थे सतयुग में तो उतना पुण्य होता था, आज राम का नाम लेने से मतलब कृतार्थ हो जाते हैं। तो शंकर जी बनत रहे, और शंकर जी के संगे शंकर जी को तो बहुत सीधे सच्चे देवता है शंकर जी।
1: अच्छा,
0: ओम नमः शिवाय का भजन करो, और शंकर जी तो तीन लोग के नाथ साक्षात है, चाहे सत्य हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, शंकर जी सभी योग है।
1: बिल्कुल,
0: जो अमर है जैसे विष्णु भगवान रूप बदल के राम को अवतार हो, राम को अवतार बदल के कृष्ण को अवतार हो, तो इनमें तो थोड़ा परिवर्तन कर दो, लेकिन शंकर जी तो जागृता है,
1: शंकर जी ने परिवर्तन।
0: शंकर जी का जो है कि छोटे से मंत्र है।

0: शिवाय। अब गणपति जी की ये स्त्री है, गणपति जी के नाम अलग अलग है, अलग अलग समय में आता हुआ, जैसे विकट गणेश, भक्तुन गणेश, निष्दंत गणेश, लंबोदर गणेश, भालचंद्र गणेश, हेरम्ब गणेश, कृष्णामा गणेश, विकट नामा गणेश, गजानन गणेश, गणाधिप गणेश। तो गणेश जी
1: अलग अलग हैं सब,
0: अलग अलग अलग हैं सब,
1: नाम ही है,
0: नहीं नहीं नाम है वो अलग अलग
1: है,
0: अलग अलग अलग अलग अवतार भी है, अलग अलग नाम भी है।
1: अच्छा,
0: हाँ, सत्यु में कुछ नाम से है, त्रेता में किसी नाम से है, द्वापर में किसी नाम से, कलयुग में किसी नाम से। गणपति जी भी है तो जो आदि गणेश है वो गणेश आदि गणेश है। अब जो माता पार्वती जी ने अपनी महल से तैयार करी थी गणेश, तो जब माता पार्वती नहाने के लिए तैयार हुई तो पहले पे गणेश जी का दिखा दो, तो डंडा लेके गणेश जी बैठ गए, बोले नहीं है यहाँ कोई नहीं आएगा। एक बार शंकर जी चल देते हैं तो माता पार्वती के पास जाने लगे, तो उन्हें पता भी नहीं था कि शंकर जी ने कहा कि गणेश जी तैयार कर दिया माता पार्वती ने अपनी महल से। तो उन्हें भाई झूका, तुम कौन हो, हे बाबा तुम कौन हो? अरे बोले हम शंकर जी, हमको पार्वती से मिलना। अरे बोले नहीं नहीं माता पार्वती अभी नहा रहे, नहीं जा सकती। अरे बोले हमें मना कर रहे गणेश जी, शंकर जी ने, शंकर जी बोले नहीं माता का आदेश से नहीं जा सकती आप अंदर। गणेश जी ने कहा, शंकर जी बोले मुझे कौन मना कर सकता है? अरे बोले मैं नहीं जाने दूंगा, माता का आदेश है। तो गणेश जी ने लेके नंदा लाए थे, शंकर जी ने सिखा दो। अरे नहीं जब ज्यादा घाल गए तो शंकर जी क्यों देते हुए, और जाके नंदी से हम बताई कि भाई जी देखो कौन कहां से अटपका है। वो बोले कर ले मुझे तो कोई मालूम नहीं। तो गणेश जी के पास नंदी से आए, शंकर जी की गए तुम कौन हो, कहां से आ गए? अरे बोले माता का आदेश से नहीं जाए, कहीं नहीं जा सकती माता के पास। तो गणेश जी ने मतलब शंकर जी आप पास करो, धनदेश्वर का पास्त करो, माता ना उतरे। अब जब क्रोधित हो गए शंकर जी, शंकर जी ने उनका शीश काट दो, नाराजी में त्रिशूल से शीश काट दो। माता क्रोधित हो गई पार्वती, जब माता पार्वती क्रोधित हो गई तो सारे देवता इकट्ठे हो गए। तब जो है सदेव की माता किस बात में आप शांत होंगे? बोले हम गणेश का जी देखना चाहते हैं। तो फिर विष्णु भगवान जो है अहरापत हाथी था कहीं, तो वहां से शीश ले आए थे कि जो पहला मतलब जो है जो भी जीव जंतु मिले उसका शीश लगाना है, तो अहरापत हाथी को शीश ले आके गणेश जी लगा हुआ। तो आज गणेश जी की सूर है, और गणेश जी मतलब फिर गणेश जी गजानन गणेश हो गए।
1: अच्छा, गजानन गणेश,
0: फिर गजानन गणेश हो गए। तो प्रथम पूजगण राज जो व्यापक सर्वत्र वंदना उनको आपको स्वीकृत हो गणपत। तो गणेश जी की पहले वंदना है सभी देवताओं में श्रेष्ठ गणेश जी, फिर वहां से हो गए। तो गणेश तो अब जैसे द्वादश शिव ज्योति ले हूं तो उनके स्थान अलग अलग हैं। एक स्थान तमिलनाडु में पड़ता है, तीन महाराष्ट्र में स्थान पड़ते हैं, एक उत्तराखंड में पड़ता है, और एक झारखंड में पड़ता है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से होते, और एक स्थान जो है वाराणसी में काशी बनारस में मतलब वहां विश्वेश्वर से इनके नाम से जाते। तो अलग नाम द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो शंकर जी भी मतलब जैसे बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो एक जगह इनके स्थान है द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग, इतना समय है नहीं आदमी के पास, उतना पैसा भी नहीं है कि इतना समय निकाल सके, इतना पैसा कैसे जैसे खान लेके हमने

0: जगह जगह से उनकी बालू ले आए स्थान की, वहां का जल लिया है, वो पिताजी संग्रह करते रहे। फिर इसी कार्यक्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग की रायपुरा में स्थापना करा दी, अपने हाथ से प्रतिमाएं तैयार करी और द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना करा दी। आज एक ही जगह रायपुरा में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल जाते हैं।
1: चलो बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको। आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के अपन सब जन के बीच में अपनी बात रखी, अपने जब बात बताई, इकला ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भैया।
0: नमस्कार आपका भी धन्यवाद।
1: हाँ सर, देखो दोस्तों, जो अपन ने बात सुनी है भैया ज्ञान सिंह यादव जी से, और इनने कितनी अच्छी बात अपने आज के कार्यक्रम बधाबंदली में करी है। अब दोस्तों यही क्रम में आप और इनके रहिए कि माता दिन भैया ज्ञान सिंह भैया जी की बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। तो दोस्तों मनोरंजन के लाना हमें ध्यान है, आओ सुना थे एक बढ़िया सी फाको जी, ये गा रहे हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी।
2: झांसी बासी दिनारा और फिर थी पुरुष वधान।

देखो दोस्तों, जब अपन ने फाक सुनी, फाक तो आनंद लो, फाक खुंग आ रहे थे भैया भूपेंद्र सिंह यादव जी। अब दोस्तों आज के कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन हो गए को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया खुद ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: भगवान नहीं मिले तो देखो गोपी ने क्या कार्यक्रम किया।
1: श्याम को घर घर तू उड़ी

0: जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले गए तो गोपिया बोली श्री कृष्ण भगवान से,
1: आप कुल जन्म रे बचाते रहे, ये आप कुल जन्म रे बचाते रहे, नाचते

0: नारियां देवी का रूप होती है, बात सब कह।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी है जब तो अगरबत्ती खोल से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी। और कहना

0: चांद पीट न मत चमक, ए चांद पीट न मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम दिया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम दिया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम दिया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिनों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी याद नहीं होता।
1: लेकिन आज वाले तो हम लगे बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना।

0: जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: बाबा संतलि कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना।

एक बोरी की लड़ों में चलैया हमारे माने बस गई।

0: संभाल ये क्या हो जिंदगानी में,
1: कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।
0: पानी बुलाओ जरा सा तपाओ लगा कर ध्यान, पानी बुलाओ जरा सा तपाओ लगा कर ध्यान, उड़ ले कर भटना।